मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो। मुझे दिल की

0: head.
1: Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: From Solihull to Erdington, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
5: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
4: The Bollywood King, Bali Brambat, with the best of Bollywood classics every weekday at 1 p.m.

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश।

सेवा सिमरन पर उपकार करदियां होया भी अपने गुनाह ही बख्शाउणे हन। किसे जप तप दा इवजाना नहीं मंगना, साढ़े जप तप वड्डे नहीं, हे गुरु नानक तेरी बख्शिश बहुत वड्डी है। साड़ी चोली छोटी है, तेरी बख्शिश बहुत वड्डी है। हे निरंकार असी मंदे चंगे जेहो जे हाँ तेरे हाँ। जे अपने अंदर चाती पा के वेखिए शायद नरक भी सानू ना जल सकन, पर तेरिया रहमतां वल जदों वेखी दे ते फिर मन खेड़े विच आ जांदा है। अपनी करनी कर नरक हूं ना पावों थोर, तुमरो बिरद को आशरो शुमार हूं। आशरा बहुत बड़ा है तू,

कपूत हों बहुर पिता को लागे। हे निरंकार अशी चंगे मंदे जेहो जे हां तेरे हां साडे औगण नाची तारी। साडे जप तप पुन दान वड्डे नहीं हन, हे गुरु नानक तेरी बख्शिश वड्डी है, तेरी रहमत वड्डी है। भूमिए चोर ते तू कर दीती बख्शिश, मेहर दी नजर वेख ली ते फिर एक पूर्ण साधु बना दिता। असी भी उस पार्टी दे आदमी हाँ, उदों वधीक पापी हाँ। ए निरंकार जिस तरह बख्शे जांदे हाँ सानू बख्श लै। ए गुरु नानक दे दर दी जिन्हां ने भी बख्शिश पानी है भाई, निम्रता धारण करनी पवेगी। जिन्हां ने गुरु नानक दे घर का खजाना लुटना है, प्राप्त करना है, ते भाई फिर निम्रता धारण करनी पवेगी। महापुरख बाबा आनंद सिंह जी महाराज सारी सारी रात गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच सिमरन विच जुड़े रहना, ते अमृत वेले फिर जदों अरदास करनी साहब जी दे चरणा विच, तां रो रो के अरदास करनी। हे निरंकार जिवें सज्जन ठग नू कौड़े राक्षस नू भूमिए चोर नू तारे है, उसे ही पाल्टी दे आदमी हाँ, उदों अधिक पापी हाँ। जिस तरह बख्शे जांदे हाँ, हे निरंकार सानू बख्श लै। ये साडे लई पूरने हन, पूरने पा के दसे के गुरु के सिख ने किस तरह जप तप सिमरन भजन करदिया होया भी जदों भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में आना है तो अपने गुनाह बख्शाने हैं। महापुरख क्या करते सन भाई, जेड़े गुनाह का तेनू पता भी नहीं ना, उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में आके माफी मंगया कर। एक साखी सुनाया करते सन बाबा जी के एक वड्डी शिला ते बैठ के तपस्वी ने 100 वर्ष सिमरन कीता, बंदगी कीती। अकाल पुरख वाहिगुरु दी आवाज आई के ए तपस्वी मंग की मंग दे, ते तपस्वी दे मन विच अहंकार आ गया, भई वेखो मेरी तपस्या परवान हो गई है, तदे ही ता ए आवाजां आ रही हैं। कई मेरा मनुख थोड़ी जी दात भी प्राप्त करके अहंकार कर बैठ कि मेरे वर्गा कौन है। पर याद रखना अहंकार दी खुराक है ये शुभ कर्मा नू खा जांदी है। जिस तरह नाम दी खुराक है ना पाप, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। परमेश्वर दे सिमरन दी खुराक है ये पापा नू खा जांदा है। जिथों तक कीर्तन दी आवाज चली जांदी है पापा नू साड़ी तोरी चलती जांदी है। इसे तरह अहंकार मन विच आ गया ये शुभ कर्मा नू खा जांदा है। मन विच अहंकार आ गया तपस्वी दे भाई मैं 100 वर्ष तप कीता है, तदे तां ये आवाजां आ रही हैं कि मंग की मंगदा, तो कहन लगा जी मैनू मेरी तपस्या का फल दिता जा। निरंकार ने आख्या कि तपस्या का फल चाहिए जां बख्शिश चाहिए है।

0: आख्या महाराज मैनू मेरी तपस्या का ही फल दिता जाए। जदों तीसरी वेरा भी एहो कुछ मंगया ना तो जिस शिला ते बैठ के तपस्वी ने तप किया सी ना वो शिला स्वरूप धारण करके सामने आन खड़ोती। हे निरंकार, हे वाहिगुरु, क्योंकि हुण ये हिसाब किताब विच पै गया, तपस्वी हिसाब किताब विच हुण पै गया, ते हिसाब तो कख दा भी होंदा है, ते बख्शीश मालक लख दी भी कर देवे ना उहदा कोई हिसाब नहीं होंदा। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इसलिए हुण ये हिसाब किताब विच पै गया, इस नूं कहो पहलां मेरा हिसाब चुका देवे, फिर इनू एदी तपस्या दा फल दे दियो, क्योंकि 100 बरस ये मेरे उपर बैठे, हुण 100 बरस मैनू अपने सिर ते रख के बैठे, पहला मेरा हिसाब चुकावे, फिर इसनू इसकी तपस्या दा फल दे देना। जदों ये सुनिया तो फिर तपस्वी दा अहंकार दूर हो गया, धरती ते विछ गया। हे निरंकार, साढ़े जप तप वड्डे नहीं हन, तेरी बख्शिश वड्डी है, तेरी रहमत वड्डी है। तो इसलिए गुरु के सिख ने अमृत वेले जाग के इशनान करके नितनेम करना, सेवा सिमरन पर उपकारी जीवन बतीत करदिया होया भी गुरु अगे ये अर

समुंदर है, बख्शिशां दा सागर है, ते जे एडे वड्डे सागर विच दो चार बेड़े साडे पापां दे डुब भी गए तां तैनू की फर्क पवेगा। इसलिए सच्चे पा

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Simon James. Clear for now this morning on the motorways. M1 moving normally southbound in the roadworks at Leicester Forest East Services, junctions 21A to 21. Still fairly clear for the moment in the long-term roadworks on the M42 to and from Birmingham Airport between junctions 6 and 9. There's problems at Huntingdon in Staffordshire. A34 Cannock Road is closed after a lorry fire. That's between Pottlepool Road and also Sawpit Lane at Brockton. If you're heading through the West Midlands at Stourbridge, still the closure of Racecourse Lane to through traffic between Norton Road and Worcester Lane, and still the work at Aylstone, so delays there with traffic diverting onto the surrounding roads. It's a closure of the main Aylstone Road. That's the latest.
0: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11.
1: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11,
1: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
4: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
11: खींचे दिखाओ
12: ये यार तुम इन ढंग की फोटो क्यों नहीं खींच सकते.
11: कहीं हाथ कटे हैं तो कहीं पैर और इसमें तुम्हें मैं लगी नहीं रही हूँ. इतनी मोटी लग रही हूँ.
13: धमाल विथ पति पत्नी और पंगा जल
4: ओनली ऑन कलर्स टीवी.
14: इट वॉज जस्ट अनदर डे अ फेमिलियर ड्राइव थ्रू फेमिलियर कंट्री बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर केम द अनएक्सपेक्टेड. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: From Alum Rock to Winston Green, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
15: Laddu ek aisi mithai hai, jiska naam har mauke par sabse pehle aata hai. Pass ho gaya, laddu khilao. नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ. अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए. और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए.
16: कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का.
15: जानते हैं क्यों?
16: क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को, जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है.
17: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
0: Wake up call. This is Kajal on breakfast.
18: Leica Radio.
19: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Laika Radio.
1: Big Boss में इस बार मिलेगा बर्तन और एक्स्ट्रा जीवन दान तथा स्टोलिंग जान.
2: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
3: Function रखा हुआ है.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
6: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk or call 07956154846.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: जी बाला सुब्रमण्यम और लता जी की आवाजों में था ये गाना जिसे आपने अभी सुना आपके मन पसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स पर. और उससे पहले हमने आपको हीरो फिल्म का गीत सुनवाया जिसमें लता जी का साथ दे रहे थे मनहर उदास. और लीजिए दो गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है. और आज रवि शर्मा शो में ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है. स्वागत है सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज ढेर सारी बधाइयां भिजवा रहे हैं क्योंकि आज खास दिन है, आज गणेश चतुर्थी है. तो जो भी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं एंड गणपति बप्पा मोरिया. और उनके बारे में जरूर बात होगी, आज बहुत बड़ा दिन है. गणपति देवों के देव हैं जिनका नाम लिए बिना किसी भी शुभ काम की शुरुआत हो ही नहीं सकती. तो बात करेंगे लेकिन फिलहाल गणेश चतुर्थी की आप सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाइयां.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए. और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the

0: वैसे तो मदन मोहन ने बहुत ही खूबसूरत स्लो और रोमांटिक काइंड के गाने बनाए हैं, लेकिन जब ये गाना सुनती हूँ तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि जो कलाकार होता है वो वाकई में कलाकार होता है। उसे आप किसी भी तरह का गाना दे दीजिए, वो अच्छा बनाकर ही देता है। ब्यूटीफुल गाना आज भी पॉपुलर है, मेरा साया फिल्म से लिया, और आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज शो में एक बार फिर से ऋतु शर्मा है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आज फिर से रवि शर्मा जी को शायद कहीं कोई काम आ गया है तो वो नहीं आए हैं, इसकी वजह से आज इस शो में मैं आपका साथ दे रही हूँ और एक बजे तक देती रहूंगी।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो हर्षद लिम्बानी जी हमें गणेश चतुर्थी की बधाइयां भिजवा रहे हैं, आपको भी गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो जी जी हमारे साथ राजेश जी हैं जो कहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का आगमन हो, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको भी एंड गणपति बप्पा मोरया। अनिल सोनी जी वियना में सुन रहे हैं, क्रॉयडन से महेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं, अरुणा भूपेंद्र पटेल हमें सुन रही हैं, अर्जुन जी हैं, मालती जी हमारे साथ हैं, गणेश चतुर्थी की आपको भी बहुत बधाइयां। हरीश खत्री जी, हंसा वोरा जी, हेतल सोलंकी, मृदु जी, भरत कंगाराम जी एंड भारत से हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश जी जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, और आपने बहुत सुंदर गणपति प्रतिमा स्थापित की है और आपने उसकी फोटो भी भेजी, और बस ये कहूँ कि गणपति हर रूप में सुंदर ही लगते हैं, और क्या बात है, बहुत सुंदर आपने सजावट की है, बहुत अच्छा लग रहा है। जासू जी स्वागत है आपका, और जितने भी साथी जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो जाता है आपको आज के प्रमुख समाचार सुनवाने का।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज आपको सुनवाते हैं देश विदेश, खेल और मौसम से जुड़ी हुई खबरें देश और दुनिया की। सबसे पहले भारत से खबर आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संबोधन के दौरान घोषणा की है कि 2029 से पहले देश के कम 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। उधर पश्चिमी बंगाल में बिना मान्यता प्राप्त 252 यानी कि 252 अमान्य मदरसों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है और 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की अगली किश्त के रूप में 1,835 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। उधर ओमान के पास एक जहाज पर हमला हुआ है जिस पर 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है और एक लापता नागरिक की खोज अभियान अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय शांति और व्यापारिक समझौतों को लेकर मिस्र के राष्ट्रपति और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय बातचीत की है। खेल जगत से आपको समाचार बताते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 72 यानी कि 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है, और भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से पराजित कर मेल जूनियर एशिया कप का खिताब बरकरार रखा है और जूनियर वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की है। भारत के 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की विदाई से ठीक पहले उत्तर भारत यानी कि दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मध्य पूर्वी राज्यों सहित 23 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश जो कि 80-85 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलने की चेतावनी का अलर्ट जारी किया है और आज 14 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर यानी कि 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और आज देश भर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। बप्पा की प्रतिमाएं पंडालों और घरों में स्थापित की जा रही हैं और साथ ही साथ आज कुछ जगह पर हरतालिका तीज का पारंपरिक त्योहार भी श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कल मनाया और कुछ लोग आज हरतालिका तीज का त्योहार आज मना रहे हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी और दे दें जिसके बारे में काफी दिनों से बात कर रहे हैं क्योंकि अब ये समय निकट आ रहा है, यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड पार्टनर्स सनातन इवेंट्स के साथ हैं जो आपके लिए लाए हैं दिवाली स्टोरी एट ओवो अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। डोर्स खुलने का टाइम है 4:30 PM, जहां पर एक स्टूडेंट प्री शो होगा पहले 5 बजे से 5:45 तक और उसके बाद मेन परफॉर्मेंस की जाएगी जो है 6:15 से स्टार्ट होकर 9:30 तक चलेगी। आपको बता दें कि इस सब को क्रिएट किया है डायरेक्शन प्रोड्यूस इसको प्रोडक्शन डायरेक्शन किया है नितिन पालन MBE ने और इसमें जो डांस परफॉर्मेंसेस आपको दिखाई जाएंगी उसे कोरियोग्राफ किया है रोहन और श्रुति शाह ने। ये इंग्लिश में एक नाटक है, इंग्लिश में इसमें रामायण दिखाई जाएगी 4 चैप्टर्स में। कुछ गाने भी होंगे, बहुत खूबसूरत गाने होंगे जिन्हें बड़े बड़े जाने माने सिंगर्स ने गाया है और इसमें फुल इंटरनेशनल कास्ट परफॉर्म करेगी, यानी कि कुल मिलाकर ये एक अमेजिंग शो होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपने टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो आप www.diwalistory.com पर जाकर अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं और इस अनोखे नाटक का या कहूँ इस अनोखे शो का जिसमें रामायण दिखाई जाएगी अपने बच्चों के साथ देख कर आने का आनंद उठा सकते हैं। तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कराइए, याद दिलाती हूँ www.diwalistory.com पर जाकर आप अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। ये है Leica
3: Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ये गाना हमेशा नवदुर्गे की याद दिलाता है जो आने ही वाली हैं और आप जानते हैं कि विंटर की जो नवदुर्गे होती हैं उसमें रास गरबा डांडिया का अलग ही रंग चढ़ता है। अब देखिए त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, सबसे पहले गणपति ही आते हैं। हर पूजा में भी गणपति की ही पूजा की जाती है, हर शुभ काम से पहले गणपति जी को ही याद किया जाता है। और देखिए जब त्योहारों का सीजन शुरू होता है तो सबसे पहले गणपति ही आते हैं और जब गणपति गणेश महोत्सव शुरू होता है तो लगता है कि हाँ अब त्योहारों का सीजन आ गया और अब एक दो महीने अच्छे से बीतेंगे और ये टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कल्याण जी आनंद जी का शानदार म्यूजिक था इस गाने में और आपको बता दें कि इस फिल्म में म्यूजिक के लिए कल्याण जी आनंद जी को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी। क्या बात है, और गाने भी कमाल के थे। और ये फिल्म नूतन की कुछ क्लासिक फिल्मों में मानी जाती है। वैसे नूतन बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं और उन्होंने कुछ फिल्में ऐसी की हैं जो बहुत ही शानदार हैं और ऐसे ही उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री नहीं कहा जाता। और आप सबने इस गीत को बहुत पसंद किया है, ढेरों मैसेजेस मिले हैं। थैंक यू इमरान, आप हमारा साथ दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग। पूरन कपूर जी जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हैं और आंटी जी कहती है रितु अब आप मुझे कंफ्यूज कर रही हो। आंटी जी कैसे कंफ्यूज कर रही हूँ, कहती है ये बताओ पहले आज सैटरडे संडे है क्या वीकेंड है क्या आज वीकेंड नहीं है, आज मंडे है। लेकिन देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबको मेरी पहचान हो गई है वीकेंड से, मतलब मेरी आवाज है तो आपको लगने लगता है कि वीकेंड है। और क्यों ना होगा, पिछले 8 सालों से जो वीकेंड पर मैं आ रही हूँ तो एक पहचान बन गई है, तो अच्छी बात है। थैंक यू, मेरी उपस्थिति आपको वीकेंड का एहसास कराती है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वीकेंड पर हम सब एक्स्ट्रा खुश होते हैं, पता नहीं क्यों। वीकेंड पर हमको नॉर्मल डेज से ज्यादा काम पड़ जाता है लेकिन फिर भी हम वीकेंड पर बहुत खुश होते हैं कि आज तो वीकेंड है, कोई टेंशन नहीं, होता है ना ऐसा। चलिए आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, मजा आ रहा है। थैंक यू, आपका ये मैसेज मिला है, कौन है जिन्होंने कर दी ना गड़बड़, नाम नहीं लिखा है। अरे नाम लिखो तो मुझे पता चलेगा कि किसने मैसेज भेजा है। जब भी मैसेज लिखो ना निजी अपना प्यारा सा नाम लिख दो, कितनी देर लगती है ना, तो नाम जरूर लिखिए। अमिता जी गणेश चतुर्थी की आपको भी ढेरों बधाइयां, भानु जी आपको भी स्वागत है, सुजीत जी स्लाव में सुन रहे हैं एंड रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं एंड हसुमती जी बहुत बहुत धन्यवाद, मधु जी आपका भी बहुत स्वागत है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कांटेक्ट कर सकते हैं, दुबई के लिए अच्छी डील्स आपको मिलेंगी। उनका फोन नंबर है 0208-574-8410 और साउथॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथॉल ट्रैवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस, विजिट southalltravel.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Leica Radio,
3: one performer.
4: Countless personalities.
3: A whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
3: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions, and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: Har meal ko banao thoda aur special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just 8.96. 10 kilograms, only 16.96. And the big 20 kilograms pack, just 29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or har special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
10: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूं. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। 11:03 हुए हैं और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। आज हम सब गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश केवल प्रथम पूज्य ही नहीं बल्कि बुद्धि, संयम, दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। भगवान गणपति हो, कृष्ण हो, राम हो, सभी के जीवन से जुड़े जितने भी प्रसंग हैं वो सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और उन सभी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को सुधारने में, जीवन को सरलता से जीने में मदद करती हैं। इसलिए आज एक ऐसा ही प्रसंग सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है तो गणपति के जीवन से जुड़ी एक कथा जो शायद आपने सुनी हो, शायद ना भी सुनी हो। सुनाती हूँ एक छोटी सी कथा या प्रसंग कह लीजिए। जब महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है, जब उन्होंने संपूर्ण महाभारत महाकाव्य की रचना करने का विचार किया तो उसके लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके उनके द्वारा बोले गए श्लोकों को जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से सही सही लिख सके। उन्हें कोई नाम सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति सुझाएं जो मेरे श्लोकों को सही सही तरह से लिख सके। ब्रह्मा जी बोले, श्री गणेश से अच्छा कोई और इस काम को कर ही नहीं सकता, आप श्री गणेश के पास क्यों नहीं जाते हैं? और ब्रह्मा जी की बात मानकर महर्षि वेदव्यास गणपति के पास पहुंचे। गणपति जी ने उनकी बात सुनी और कहा, हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। और वो शर्त थी, उन्होंने कहा, हे मुनिवर, जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते बोलते रुक गए तो मैं वहीं लिखना छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी ने गणपति की शर्त सुनी। गणपति बुद्धिमान तो थे ही, लेकिन वेद व्यास जी भी कम नहीं थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी। वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त तुमको माननी होगी। गणपति बोले, मुझे स्वीकार है, बताइए मुनिवर मुझे क्या करना होगा? तो वेद व्यास जी बोले, शर्त यह है कि जब तक आप मेरे प्रत्येक श्लोक का अर्थ सही सही ना समझ ले तब तक आप उसे नहीं लिखेंगे। गणपति जी ने मुस्कुरा कर ये शर्त स्वीकार कर ली और शुरू हो गया महाभारत को लिखने का कार्यक्रम। लेकिन लिखते लिखते और श्लोक बोलते बोलते एक समय ऐसा आया कि जब गणपति जी लिखते जा रहे थे, अचानक से उनकी कलम टूट गई। कलम जो उस समय मोर पंख का यूज किया जाता था लिखने के लिए, उसकी नोक टूट गई। अब नियम के अनुसार गणेश जी अगर रुकते तो उन्हीं की शर्त टूट जाती, इसलिए उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने दांत का एक हिस्सा तोड़ा और तुरंत उसे शाही में डुबोकर लिखना कंटिन्यू करा। और तभी से गणपति एक दंत कहलाए। जब भी वेद व्यास जी को थोड़ा आराम चाहिए होता था, क्योंकि गणपति तो लिखते ही जा रहे थे और वेद व्यास जी को श्लोक सोचने के लिए समय चाहिए होता था, तो वेद व्यास जी कठिन
श्लोक बोलते थे ताकि गणपति को वो श्लोक समझने में समय लगे। लेकिन विद्या बुद्धि के दाता तो गणपति ही है, उन्हें तो आप कुछ भी कह लीजिए, उन्हें क्या समझने में टाइम लगेगा। और इस तरह से वो फटाफट फटाफट लिखते गए और कलम टूटने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लेखनी को नहीं रोका। इस कहानी से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज और बहुत बड़ी चीज कह लूं कि अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप लोग, आपको अपना सुख, आपको अपना अहंकार भी छोड़ना पड़े तो पीछे हटना नहीं चाहिए। गणपति चाहते तो रुक जाते कि भाई कलम टूट गई है, अब मैं कैसे लिखूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, अपने दांत को तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया। वैसे तो विघ्नकर्ता गणपति जी के बारे में बहुत ही सारे प्रसंग हैं, लेकिन आज इस छोटे से प्रसंग को मैंने शामिल किया। आज हम सब गणपति का त्यौहार मना रहे हैं, आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें, आपको सद्बुद्धि दें, आपको समृद्धि दें। आज के दिन ऐसी ही मेरी कामना है आप सबके लिए। और एक बार फिर से आज के दिन की गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।

अलका याग्निक की आवाज में महानता फिल्म से हमने आपको ये गीत सुनवाया जिसमें माधुरी दीक्षित थी, साथ में थे संजय दत्त। और आज गणेश चतुर्थी है जिसकी मेरी ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयां।

0: भगवान गणपति की मूर्ति अपने घरों में लाते थे और घरों में अपने परिवार जनों के साथ गणपति पूजा और गणपति का जो भी कार्यक्रम है वो घर वालों के साथ किया जाता था। लेकिन आपको बता दें कि 1893 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों ने राज कर रहे थे, उस समय एक नियम था और वो ये नियम था कि जो भी भारतीय हैं वो एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज सरकार को लगता था कि ये एक साथ मिलकर हमारे विरुद्ध में कोई कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर लें। इसलिए ये सख्त कानून था कि भारतीय इकट्ठे एक जगह नहीं मिल सकते। और तब स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में जब लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, तब तिलक जी ने गणेश उत्सव को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाया और इस बात के लिए अंग्रेज उनसे मना नहीं कर पाए। भारत में रहकर भारतीय त्योहार को मना करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा और इस तरह से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। और इस उत्सव में समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों ने एक मंच पे आकर एकजुट होकर कार्यक्रम करने की शुरुआत की। और इसका सारा क्रेडिट जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। और तब से गणेश चतुर्थी इस तरह से घरों के बाहर पंडालों में डांस के साथ, धूम धड़ाके के साथ, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ मिलाकर मनाया जाने लगा। आजकल भी लोग घरों में भी मनाते हैं, लेकिन इस तरह से भी मनाया जाता है। तो ये परंपरा पुरानी नहीं है, ये 1893 से ये सब शुरू हुआ है। चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ हमने शेयर की और बस यही था आज का चिंतन। समेटते हैं आज के चिंतन को और सुनवाते हैं आपको दो बैक टू बैक गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन। फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शन सब इंक्लूडेड। विजिट maharaja tours.co.uk और कॉल 07956 154846।
4: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th टू 20th अक्टूबर लाइव फ्रॉम इंडिया गरबा डांडिया म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर टिकट्स जस्ट £5 दी स्टार्ट

0: ये गाना तो एक मास्टरपीस है. किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म का ये गाना कमाल है. और उससे पहले आपने उम्मीद फिल्म का गीत सुना, जो भी कमाल था. मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जितने भी गाने हैं, मेरा ये बहुत फेवरेट वाला गाना है. और आप सबको गाने पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. और विजय जी, आपने लिखा है कि गंवार फिल्म का गाना, अब बिल्कुल मैंने समझ लीजिए आप ही के लिए चलाया, आपको डेडिकेट करते हैं. और अब इस गाने को भी आपको डेडिकेट करते हैं. उल्लास का कहना है कि किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आपका भी फेवरेट है, चलिए आपके नाम पर भी गया. मालती जी हमें सुन रही हैं, आपका चिंतन, कहती हैं हमें अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, थैंक यू साथ देने के लिए. और यही कहना है हमारे गिरीश जी का भी, और हमारे वीरेंद्र चौधरी जी का, हंसा जी का, दिव्या जी का, कीर्ति जी का, ललित छत्री सा जी का, विजय गुनोवा जी, भारतीय दीदी, अनिल सोनी, हिमांशु पटेल, रागिनी जी, जगदीश जी बुशी से, अर्जुन जी, महेंद्र पटेल जी, एंड ऑफकोर्स हमारी रानी जी स्लाव वाली, थैंक यू. सभी को आज का चिंतन पता चला, तो आज गणपति जी का दिन है तो सोचा क्यों ना उन्हीं से रिलेटेड कोई बात की जाए. थैंक यू शेखर अनंत जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. हसुमती जी, मधु जी, किरण जी हैरो से, इमरान, थैंक यू, स्वागत है आपका. और वीरेंद्र चौधरी जी, आपने हमें बताया है कि आप थेम्स पर जो गंगा आरती थी वो देखने के लिए गए. सच बताओ मेरा भी बहुत मन था वहां जाने का, लेकिन मैं पता क्यों नहीं गई, क्योंकि शायद मैं असल गंगा आरती देखने के लिए जाने वाली हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि हरिद्वार जाकर असल गंगा आरती ही देखूंगी, और मैं थोड़ा कल बिजी भी थी तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई. मुझे लग रहा था कि ये शायद आज है, मंडे को है, लेकिन ये तो कल हो गया. मतलब थोड़ा मेरा इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है ना, आपने फोटो भेजी है तो ये कल ही हो गया होगा. लेकिन चलिए, आपको बहुत मज़ा आया और वहाँ बहुत सारे लोग थे, आई एम श्योर उन्होंने बहुत इन्जॉय किया होगा. और ये जो हरिद्वार की गंगा आरती है ना, हरिद्वार में होती है या बनारस में, मैं देखो फिर कंफ्यूज हो गई. ये कहीं तो होती है, लेकिन जिसने भी देखी है कहते हैं एक बार देखने लायक है, जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए. तो मैं भी प्लान कर रही हूँ कि देख कर आऊँ, फिर मैं आके बताऊंगी आपको कि वो कैसी थी. लेकिन फिलहाल अभी मेरा कुछ प्लान बना नहीं है, मैं आपको बता के जाऊंगी जब जाऊंगी. तो मैं नहीं चाहती कि आप सोचे ऋतु कहाँ चली गई. तो इसलिए थैंक यू साथ देने के लिए. और जो बातें आप हमारे साथ शेयर करें, अच्छा लग रहा है. बताइए अच्छा लगता है किस तरह से आप गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं. और आज हिंदी दिवस भी तो है ना, उसके बारे में भी कुछ बातें आपको जरूर बताऊंगी. लेकिन फिलहाल तो हम आपको ये याद दिला दें कि भाई आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच देख सकते हैं अब जियो स्टार पर. 3 वनडे इंटरनेशनल्स जो खेले जा रहे हैं फ्रॉम संडे 13th अंटिल थर्सडे 17th सितंबर, दोपहर में 2:30 बजे से, नहीं 2:30 नहीं 2:50 से शुरू होंगे. तो ये देखने के लिए आपको डाउनलोड एंड सब्सक्राइब करना होगा जियो स्टार ऐप. एंड जियो स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप.
1: लाइक अ रेडियो फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: चलिए, इतने प्यार मोहब्बत से भरे गाने मैंने आपको सुनवाए कि मुझे इश्क है तुझी से, या फिर हमें तुमसे प्यार कितना. तो सोचा इसी प्यार के माहौल में एक और प्यार वाला गीत बजा दूं.

0: साजन फिल्म से था ये गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज में और किंग्सबरी में अमीन मोहम्मद जी प्रोग्राम सुन रहे हैं गीतों को पसंद कर रहे हैं थैंक यू सो मच साथ देने के लिए इसके अलावा दिनेश पोपट जी हमारे साथ जुड़े हैं एंड साक्षी को ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है जो स्लाव में सुन रही हैं तो चलिए साक्षी आपको डेडिकेट करते हैं ये गाना
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: तो चलिए आपको पॉडकास्ट के बारे में लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के बारे में अपडेट दे दें उसका नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेब्ट्स और इसे होस्ट किया है खुश ने लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब अमेजन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk.
5: Leica Radio.
6: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hai sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hai. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99p se shuru. Aur Herdsman Butter Ghee 20 kg sirf £10.99.
8: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee.
10: October, with dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Dissy Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click RiffcoTheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है पास हो गया लड्डू खिलाओ नौकरी लग गई लड्डू खिलाओ अरे सगाई कर ली लड्डू नहीं खिलाए और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना तो खाइए और पछताइए कोई भी काम हो सबसे पहला नाम लड्डू का जानते हैं क्यों क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं
14: Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com.

लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक था इस फिल्म में और फिल्म का नाम राम बलराम और उससे पहले शैलेंद्र सिंह की आवाज मैं शायर तो नहीं ब्यूटीफुल गाना और इस गाने को सुनकर महेश जी ने मैसेज भेजा है कहते हैं ऋतु ये मेरा फेवरेट गाना है चलिए आपके नाम पर कर दिया और प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है और आपने अगर अभी अभी सुनना शुरू किया है तो आपको बताती चलूं कि आज इस शो में रवि शर्मा जी की जगह मैं ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही हूं और ये साथ एक बजे तक रहेगा और एक बजे के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी लेकिन आंटी जी आपको मैसेज आया है और स्वागत है अमिताभ बच्चन के गाने आपको पसंद आते हैं एंड जासू जी कहती हैं कि ऋतु अगर आप जा रही हो गंगा आरती देखने के लिए तो अकेले मत जाओ मुझे साथ ले चलो तो चलिए ना अच्छा लगता है मुझे तो साथ में जाते हैं ना तो मजा चार गुना हो जाता है और आपने कहा है कि आप फरवरी में जगन्नाथपुरी जाने वाली हैं तो आप कह रही हैं कि चलो साथ में तो आपको बता दूं फरवरी में तो मैं भी जाने वाली हूं लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं जाऊंगी कहाँ जाऊंगी ये अभी डिसाइड नहीं किया है लेकिन जगन्नाथपुरी भी मेरी लिस्ट में है टिक लिस्ट में है और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने यूरोप अमेरिका बहुत सारी जगह घूमी है पर मैंने भारत नहीं घूमा तो मुझे अब भारत घूमना है और मैं सच बता रही हूँ मैंने इतनी सारी कंट्रीज घूमी हैं लेकिन मुझे भारत जाकर जो मज़ा आता है ना वो मुझे कहीं नहीं आता मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं ना बहुत अच्छे दिल वाले होते हैं इतने हेल्पफुल नेचर के होते हैं इतने सीधे सरल होते हैं और मुझे लगता है तभी भारत पर इतने सालों विदेशियों ने राज किया क्योंकि भोले होते हैं समझ नहीं पाते हैं दूसरों की चालाकी और इसीलिए हज़ार साल से भी ज़्यादा हमारे भारत को दूसरे लोगों ने लूटा खसोटा तोड़ा ताड़ा यू नो सब कुछ किया सोचती हूँ कभी कभी तो बहुत दुख लगता है लेकिन उस बात में नहीं जाऊँगी बट हाँ मुझे इंडिया जाकर बहुत मज़ा आता है वहाँ का खाना पीना रहना यू नो शॉपिंग वीपिंग ओहो हो मतलब बात जब करती हूँ तो लगता है कि बस वहीं पहुँच जाऊँ तो जासू जी फरवरी में मैं भी जाऊँगी हो सकता है तो हम मिल जाएंगे दुनिया बहुत छोटी है लेकिन आपके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं मुझे मज़ा आ रहा है कल्पना स्वागत है आपके इस मैसेज के लिए और मैसेज भेजा है अशोक जी आपने बहुत प्यारा मैसेज लिखा है जी तो जा रहा है कि जोर जोर से पढ़ दूं लेकिन मैं कहूंगी थैंक यू इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए और बस मैं आपका तहे दिल से थैंक यू ही कहती हूं इस तरह से आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें तो मुझे और क्या चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए एंड अमीन जी आपने भी बहुत प्यारी बातें लिखी है सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच प्यार के साथ साथ देने के लिए और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 14th सितंबर है और आज का दिन हमारे भारतीय इतिहास और हमारी भाषाई

0: सितंबर 1949 को फैसला होने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस आज ही के दिन 1953 में मनाया गया था और उस समय अंग्रेजी भाषा का देश पर बहुत प्रभाव था और इसी के चलते अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से अलग हटकर अपनी स्वदेशी भाषा को आम जिंदगी में भी और जो देश के कामकाज हैं उसमें बढ़ावा देने के लिए और भारतीयों को गर्व महसूस कराने के लिए कि भाई अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो इसमें शर्म की बात नहीं है, प्राउड कीजिए, हिंदी बोलना एक अच्छी बात है, आपकी भाषा है ये, और ये लोगों को महसूस हो सके इसलिए भी आज के दिन की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि बहुत सारी भाषाएं होती हैं जो अलग तरह से बोली जाती हैं, अलग तरह से लिखी जाती हैं, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जो जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसलिए हिंदी को लिखना, सीखना, समझना, बोलना बहुत आसान है और भाषा तो बहुत सुंदर है ही। तो अगर आप हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, यकीन मानिए, क्योंकि जिस तरह से लिखी जाती है उस तरह से ही बोली जाती है। इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पर ई का प्रोनंसिएशन कुछ होता है, कहीं पर आई का कुछ होता है, कहीं पर कुछ अलग रूल है, कुछ अलग रूल है। और इंग्लिश का बताऊं, इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो कई लैंग्वेजेस से इंस्पायर्ड होकर बनी है, दैट्स वाई उनकी अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल्स है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप शायद ये जानते भी होंगे कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। और गांधी जी का भी मानना था कि जिस देश के पास अपनी एक ऐसी भाषा नहीं है जो जन जन को जोड़ सके तो उसकी आज़ादी अधूरी है। और उन्होंने 1918 के हिंदी सम्मेलन में सबसे पहले हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात उठाई थी, लेकिन ये बात अब तक उठी ही हुई है, हुई नहीं है। हिंदी अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है और ये काम कब होगा पता नहीं, लेकिन जल्दी हो ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज के दिन की आपको बधाइयां। और कुछ लोग आज के दिन को विश्व हिंदी दिवस से भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आता है और आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे, जो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए। और याद रखिए कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
1: Leica Radio.
2: क्योंकि सांस भी कभी।
3: This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: stores, Worley Superstore, Opus, and all independent stores nationwide. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions, and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या कैटरिंग रागासन
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 0208574 8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
5: From West Brom to Sparkhill, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
6: Say Ganapati Bappa Moria. लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
5: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आग गले लग जा फिल्म से लिया था ये गाना जिसमें शर्मिला टैगोर और शशि कपूर ने काम किया था और शशि कपूर है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स विजिट dairyvalley.net
0: तो थैंक यू कल्पना आपका मैसेज मिला है आप शो को पसंद कर रही हैं स्वागत है आपका इस शो में और अगला गीत चलिए आपके नाम करते हैं और आपके साथ साथ ये गाना जाता है हमारे नरेंद्र पांचाल जी के लिए भी जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है कहते हैं अगर इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं तो हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं अरे हिंदी को तो हिंदी ही कहते हैं हाँ एक्सेंट आप अलग कर सकते हैं एनीवेज आप हमारे साथ जुड़े हैं स्वागत है आपका एंड फारूक मोहम्मद जी आप भी हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद ये गाना चलिए आपको भी डेडिकेट करते हैं

0: ब्यूटीफुल गाना अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में, जिसे लिया था मैंने फिल्म यस बॉस से जतिन ललित का म्यूजिक. और अब इस गाने के बाद
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: So, इस गाने के बाद मैं आपको ले जाने वाली हूँ 50s की ओर. देखते हैं 50s वाला गाना कौन सा है. लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई बिग बॉस शुरू हो गया है. यस, बिग बॉस का 20th सीजन है ये. एक बार फिर से सलमान खान होस्ट कर रहे हैं और 9:30 बजे रोज कलर टीवी पर और जियो स्टार पर ये दिखाया जा रहा है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो स्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी.
1: Like a radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको लेकर चलती हूँ 50s की ओर.

0: ब्यूटीफुल गाना मदर इंडिया फिल्म से लिया था और जिसे हमारे हरीश खत्री जी, स्वीटी कालरा जी आप सभी ने पसंद किया है। और सुनीता जी कहती है कि ऋतु मेरा भी प्लान है आपकी तरह भारत भ्रमण करने का, तो बिल्कुल कीजिए, इतनी सुंदर जगह है और साथ ही साथ अपना खाना, अपना वेशभूषा, शॉपिंग वीपिंग, यू नो इतनी सारी चीजें, वहां का मजा ही कुछ और है। तो बिल्कुल जाइए, नवम्बर में आप जा रही है, हाँ तो बेस्ट मौसम है भारत जाने के लिए नवम्बर का, घूम कर आइए।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर दुबई जाना चाहते हैं तो साउथ ऑल ट्रेवल को कांटेक्ट कीजिए, उनके पास दुबई के लिए अच्छी डील्स हैं। उनका फोन नंबर है 0208-574-8410. साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
2: ये है लाइका रेडियो।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज वो 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
3: The gold rate is 103.40 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica
3: Radio. जी हाँ, आप बिल्कुल लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड सुन रहे हैं, जहां पर ऋतु शर्मा रवि शर्मा की जगह आपका साथ दे रही थी, लेकिन अब जाने का समय हो रहा है. अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार बाली ब्रह्मवट आपका साथ देंगे, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. कल रवि शर्मा जी होंगे इस शो में. आज आपने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत प्यारे मैसेजेस भी भिजवाए, थैंक यू सो मच साथ के लिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए मेरी ओर से बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं हमारी ओर से.
5: हेलो देयर, माय नेम इज दीप राजा एंड आई डू द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो फ्रॉम 7 AM सैटरडेज एंड संडेज लाइक अ गोल्ड इन लंदन, द मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: It's back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers,
9: on Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580, or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
9: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: The buy is an opportunity.

0: के लिए एक गाना तो मैंने गाया, आई विल एंड माई शो आफ्टर 3 hours, द लास्ट सॉन्ग, सेकेंड लास्ट सॉन्ग विल बी अ सॉन्ग दैट आई सैंग फॉर जीपी सिपी फिल्म्स, जी हाँ, एंड पिक्चराइज्ड ऑन जावेद जाफरी. ओके, आगे बढ़ते हैं. विनोद राठौड़ का बर्थडे था 12 तारीख को, सो मेरे भाई को मैंने हैप्पी बर्थडे विश किया था और ये गाना मैंने पहला जो सुनाया, विशिंग हिम अ हैप्पी बर्थडे. लेकिन लेट्स कम बैक टू जीपी सिप्पी. तीन सेपरेट डिनेस्टीज. जीपी सिप्पी, दे यूज टू डू मासिव हाई बजट एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर्स. जीपी सिप्पी उनकी टीम. एनसी सिप्पी की टीम, दे वर फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर्स विद ऋषिकेश मुखर्जी. Beloved clean middle class family comedies and dramas, जैसे कि फिल्म आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, है ना, एंड सत्ते पे सत्ता, ये फिल्में. अभी एनएनसीपी, दैट वॉज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर एंड ही यूज टू मेक फिल्म विच वर स्लिक थ्रिलर्स एंड म्यूजिकल हिट्स, जैसे कि काली चरण, सौदागर, है ना, वो कौन थी, कर्ज. वो कौन थी फिल्म इतनी हिट हुई, उन्होंने एक घोड़ा रखा था जिसके ऊपर बैटिंग चलती थी एंड ही यूज टू डू बैटिंग विद हॉर्सेस एंड एक घोड़े का नाम ही रखा था वो कौन थी. दैट वॉज एन एन सी पी. बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन जी पी सी पी. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबडी इन द मिडलैंड्स. इट्स 433rd डे ऑफ लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी कहते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ सफदर भाई का. सफदर भाई जान ने मुझे मिठाई भेजी, ब्यूटिफुल बॉक्स, स्पेशली मेरा नाम लिखकर उन्होंने मेरे यहाँ स्टूडियो पे भेजी के बाली ब्रह्म भट्ट को दे देना ये मिठाई. सो थैंक यू सो मच सफदर भाई जान, इट्स सो काइंड ऑफ यू, सो लवली ऑफ यू. एंड आगे बढ़ते हैं रिमेम्बरिंग जिपी सिपी ऑन हिज 112th बर्थ एनिवर्सरी. थर्ड आवर में वी गोना रिमेम्बर नन अदर देन राजकुमार कोहली.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Okay, £1 in British sterling will fetch you up to, let me see the latest rate of SBI UK, 128.9. It's changed. It's 128.4 Indian rupees for one British sterling pound. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahm Bhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: List up. Navratri ni dhammakedar raaton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October live from India. Garba, Dandiya, music and a fun

0: एस डी बर्मन का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स, इनकी पहली फिल्म सजा 1951।
1: दिस इज Leica रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स
0: एंड द एवरग्रीन हिट ऑफ कोर्स जिंदगी एक सफर है सुहाना।

Okay, so we have got a very juicy subject here of GP-Sippy. अब GP-Sippy से मैं थोड़ा सा digress होता हूँ. It's a 112th birth anniversary of GP-Sippy. अब मैं शम्मी कपूर के ऊपर जाता हूँ because ये गाना आपको तो मालूम ही है, ब्रह्मचारी. The film was produced by, of course, GP-Sippy. लेकिन ये दोस्ती जो थी शम्मी कपूर और जय किशन की, जय किशन या शंकर जय किशन के जय किशन, वो हमेशा बैठा करते थे एट अ रेस्टोरेंट. वो डिटेल्स मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑल आई कैन से कि दे यूज टू फाइट समटाइम्स, दे यूज टू आर्ग्यू, दे यूज टू फाइट समटाइम्स. दोस्ती में ऐसा अप्स एंड डाउन्स तो होता ही रहता है, एज यू ऑलरेडी नो. अगर गहरी दोस्ती, सच्ची दोस्ती हो तो उसमें झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे दिन वापस एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं. शमी कपूर एंड जय किशन हैड अ मेजर क्लैश. यू नो, व्हेन जय किशन रिफ्यूज्ड टू टेक बैक हिज ब्रिलियंट सॉन्ग, एक फिल्म थी फिल्म में गाना था ससुराल फिल्म में, तेरे प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे. तो ये एलवी प्रसाद की जो फिल्म थी ससुराल, उसमें ये गाना डाला गया था. शम्मी कपूर वांटेड दैट सॉन्ग सो बैडली, लेकिन जय किशन वुड नॉट डू दैट बिकॉज एक प्रिंसिपल की बात थी. उन्होंने ये गाना एलवी प्रसाद जी को दे दिया था वापस लेकर, उनको अपसेट नहीं करना चाहते थे, और शमी कपूर को भी उन्होंने मनाया, लेकिन शमी कपूर मुंह चढ़ा के अपसेट हो गए थे. फिर जय किशन, अ मैन विद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मॉरल्स, ही स्टूड फर्म इन हिज डिसीजन. शमी कपूर लेटर ऑन, बाद में उन्होंने अप्रिशिएट की थी ये बात, एनी रेकनसाइल्ड विद हिम. नाउ देयर इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी बिहाइंड शंकर जयकिशन का मास्टरपीस गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर. इट वॉज रिकॉर्डेड ओरिजिनली फॉर देवानंद की फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है इन 1961. एक्चुअली क्या था, ये गाना जब रिकॉर्डिंग जब हुआ तब देव साहब वॉज नॉट इन टाउन, एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज जर्नी, when he came back he heard the song and he rejected it. He said ke ye it won't go with my persona, ye meri style ka gana nahi hai, so main is gaane ko nahi lunga, I'm sorry but I have to say no. So Jay Kishan ji ne kya kaha, unhone, wo bade confident the about this composition, but he got very upset and he sort of, because of the rejection by Dev saab, and he went to Shami Kapoor, unki roz sham ko baith ke ya din mein baith ke coffee peena ya bad drink karna aur baith ke discussion karna. To unhone kaha ki yaar Dev saab ne mujhe bada upset kar diya. Bole kya hua, kya hua? Bolte ki ye baat hui, maine gana itne dil se ye gana main banaya lekin unhone reject kar diya. Bole mere ko suna, mere ko suna. Upon listening to the song, Shami Kapoor jumped immediately. He jumped at the idea and he said, ये गाना मेरा होगा, एंड आई वॉन्ट हिम फॉर द फिल्म बदतमीज. हाँ, यू वोंट बिलीव दिस, इट वॉज मेंट फॉर दिस फिल्म. उन्होंने कहा कि देख ये गाना मेरे लिए रखना, द सॉन्ग इज माइन, प्लीज कीप इट. एंड ही टुक द सॉन्ग टू मनमोहन देसाई, हु वॉज डायरेक्टिंग बदतमीज एट दैट टाइम. तो मनमोहन देसाई ने, ही कुड नॉट पिक्चराइज इट ड्यू टू द बजट कंस्ट्रेंट्स. एक बजट होता है ना फिल्म का, तो बजट के बाहर जा रहा था सब कुछ. एंड ही सेड सॉरी शमी, मैं नहीं कर सकूंगा बिकॉज बजट कंस्ट्रेंट्स. एंड शमी आफ्टरवर्ड्स गेव द सॉन्ग टू GP-Sippy, हु वाज प्रोड्यूसिंग ब्रह्मचारी. एंड दैट्स हाउ द ब्रिलियंट क्रिएशन वंस इन द राइट हैंड्स बिकेम एन ऑल टाइम क्लासिक. इट बिकेम एन ऑल टाइम क्लासिक, नो डाउट. देवानंद साहब पछताए, मनमोहन जी भी, मनमोहन देसाई भी पछताए, कहा ये गाना कितना बड़ा हिट हो गया. एंड देयर यू गो, एंड शमी कपूर फॉर दैट फिल्म.

0: Listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. Hartyhanks.com. Harty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HartyHanks.com today.
2: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है. पास हो गया, लड्डू खिलाओ. नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ. अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए. और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए. कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का. जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है. लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
3: Good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स फोर स्टार होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
4: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी टू नाउ बी पार्ट ऑफ इट क्रिएट wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963-5757 and book your meeting. Danube 11, 11. Danube Properties.
6: Danube 11, 11. Yeah. Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
7: सदैव मर्यादा पुरुषोत्तमं लोकनाथं श्रीराम श्रीराम
8: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
9: Book now on DiwaliStory.com, exclusive radio
10: Download
9: partner.
10: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. This is Leica Radio across the Midlands.

0: is Leica Gold across Greater London.
1: फिल्म भ्रष्टाचार।
2: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: जिगर में, वो बोलते नेगेटिव रोल मैं नहीं करूंगा, नो वे, उसने मना कर दी। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें बोलते कि मेरे को मेन रोल चाहिए, आई एम अ हीरो, तो मेरे को हीरोइक रोल्स चाहिए, बड़े रोल्स चाहिए, सो ये रोल मैं नहीं लूंगा। और परमीत सेठी को रोल मिल गया एंड इट बिकेम दिल वाले दुल्हनिया द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन इंडिया। ऐसी ऐसी गलतियां की उसने। डैडी ने उसको दुश्मन जमाना, कोहली स्टार्ड इन सेवरल अदर फिल्म्स, यू नो, दुश्मन जमाना, अनाम, औलाद के दुश्मन, फिर उनके डैडी ने कहर फिल्म बनाई एंड देन ही आल्सो वेंट ऑन बिग बॉस 7। फिर इवेंचुअली नेगेटिव रोल उसने किया ही किया, यस, सलमान खान की स्टारर फिल्म प्रेम रतन धन पायो, उसमें उसने नेगेटिव रोल किया, तो पहले से मान जाता तो ही वुड हैव रियली सक्सीडेड वेरी वेल। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट राजकुमार कोहली, जिन्होंने फिल्में बनाई जैसे कि कहानी हम सब की, नागिन फिल्म, नागिन का आपने अभी गाना सुना, जानी दुश्मन, दैट वॉज अनदर ब्यूटिफुल फिल्म। इन्होंने जानी दुश्मन वापस 2000 के बाद उनके बेटे को रिवाइव करने के लिए की, लेकिन इट वॉज द बिगेस्ट फ्लॉप यू कैन एवर सी। एंड देन ये गाना जो आपने सुना, क्या नाम है तेरा, वो क्या नाम है तेरा, उसमें ऋषि कपूर का नाम जो आता है, ही वॉज एन एक्टिंग इन द फिल्म, ही केम एज अ कैमियो रोल इन नौकर बीवी का। और अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई राजकुमार कोहली ने एज अ प्रोड्यूसर, गोरा और काला, एंड देन लुटेरा, लुटेरा के बाद तो ऑफ कोर्स हीरोइन से शादी कर ली, एंड देन ही सेड मैं जट्टी पंजाब दी, पंजाबी मूवी, अनदर वन पिंड दी कुड़ी ही डिड, एंड सपनी, ये सब पंजाबी मूवीज, दूल्हा भट्टी, ये सब पंजाबी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की थी। और डायरेक्शन में तो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड टू यू, विरोधी, पति पत्नी और तवाइफ, 20 साल बाद, साजिश, इंतकाम 1988 की, इंसानियत का दुश्मन, जीने नहीं दूंगा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, अरमान कोहली को जितनी फिल्में दी गई उसमें सब नेगेटिव टाइटल्स थे, विरोधी, कहर। अगर कुछ पॉजिटिव टाइटल होता तो शायद कुछ बन सकता था, मे बी आई एम सुपरस्टिशियस, आई डोंट नो, बट वी आर रिमेम्बरिंग ऑफकोर्स राजकुमार कोहली। राजकुमार कोहली हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज शशि कपूर। और शशि कपूर जी ने कोई फिल्म की थी क्या? वेल, शशि कपूर हैड साइंड फॉर जानी दुश्मन, ये फिल्म में इन्होंने साइन कर दिया और फिर ही ऑप्टेड आउट बिफोर द फिल्मिंग बिगैन। सो राजकुमार कोहली के साथ शशि कपूर ने कभी कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन शान फिल्म, दैट वाज जीपी सिप्पी की फिल्म, उसमें शशि कपूर जी ने रोल निभाया शान फिल्म में विद अमिताभ बच्चन। और जो गाने थे उसमें रफी साहब की आवाज थी ऑन शशि कपूर, एंड किशोर कुमार एंड आर डी बर्मन, ये सब आवाजें थी ऑन ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन। सो नेक्स्ट गाना होगा ऑफ फिल्म शान फॉर आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शशि कपूर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to the exchange rate being 128.4 Indian rupees. 128.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: Gold Afternoons with

0: साल
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
0: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
2: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
0: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
2: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
0: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner, Leica Radio. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757. To arrange your meeting.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिज है ना
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
4: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड पोटैटो चिप्स नाउ
6: आई हैव फन से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली
0: It's back and it's bigger.
2: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
2: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: Radio Wally's Roller Coaster with Radio Wally on Leica Radio Midlands.

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
1: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
6: Big Boss में इस बार मिलेगा बर्तन और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हंस तो मेरी जान
7: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: ये है
1: Like a radio. तुम
2: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Har meal ko banao thoda aur special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just 8.96. 10 kilograms, only 16.96. And the big 20 kilograms pack, just 29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or har special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या कैटरिंग रागासन
5: It's back and it's bigger.
2: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
2: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
2: साउथ हॉल ट्रेवल Atoll protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade, visit heraldpackaging.com.
7: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: This is Leica Radio.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक